0: औरत के खूबसूरती के लिए हाइट चाहिए 5'4".
1: और फिगर
0: 36, 24, 36, नथिंग लेस नथिंग मोर।
2: लेकिन ये कैसे होगा?
3: व्हाई?

0: बच्चों
1: प्रणाम। मैं महर्षियों का चेला किसी की खातिर देखने आया हूँ आपका ये मेला।
0: तो महाराज
1: यस
0: योगी
1: दैट्स राइट
0: वेलकम
1: थैंक यू
0: स्वागतम।